प्यार पिता देवेगा पड़ोसी नहीं दे सकता, जो स्वाद अंब विचों आवेगा अंबली विचों नहीं। ऐ गुरु के सिख जो उपकार तेरे ते गुरु कर सकता, संसार दा होर कोई जीव मात्र नहीं कर सकता, ना मां ना बाप ना भैन ना भरा ना कोई रिश्तेदार। गुरु दा उपकार बहुत वड्डे। भाई साहब कहंदे ने सारा संसार ढूंढ के आ, लहंदे तो लैके चढ़दे तो लैके लहंदे तक नवा खंडा विच घूम के आ, गुरु वर्गा

तू मंदर सी, तू रब दी सुहागण सी, तू सरोवर सी, लेकिन तू अपने सारे गुण गाल ले हैं। महाराज जी वो किमें गले हैं, किड़िया किड़िया चीजा ने गाले हैं, सुनो किमें गले हैं। कहते हैं

भगत नामदेव जी इस शब्द दे विच जिस थीम नू असी अज आरंभ करना है, जिस विचार दी लड़ी आरंभ करनी है, वो है नाम। ते भगत नामदेव जी अपने जीवन का जो निचोड़ है वो दस रहे हैं, ताकि सानू भगत जी के इन शब्दों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिल सके, कोई समझ प्राप्त हो सके। कहते हैं, मैं अंधलहे की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं अन्ना हां, अंधा हां, पर तेरे नाम की स्टिक जो है, तेरे नाम की जो छड़ी है, वो मेरा आसरा। पाप के तेरे नाम की मैनू सपोर्ट है, तेरा नाम मेरा सहारा। पाप के तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम की छड़ी हाथ च होने तो बिना मैं एक कदम भी चल नहीं सकता। जीवन दे विच अत्यंत खड्डे हन, टोए हन, उतराव चढ़ाव हन, उन्हां दे विच जद तक तेरे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच है, ओ मेरा अंधले दा आसरा, तेरा नाम खुंदकारा। फिर आखते हैं, मैं गरीब, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मस्कीन, बिल्कुल जो खाली हो, जिसके पास कुछ ना हो। पर कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही गरीब हां, क्योंकि तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम मेरा आधार है। तेरे नाम तो बिना मैं अपने आप नू गरीब और मस्कीन समझांगा, पर जब तेरा नाम मेरे पास है फिर मैं गरीब नहीं रह जांदा, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी बाणी च आखदे हन,

0: फिर महाराज जी ने पूछी, महाराज धर्म दे विच पूजा दा बड़ा स्थान है, पूजा धूफ बत्ती बालो, जल छिड़को, फुल लियाओ, तलियां बजाओ, शंख बजाओ, बहुत किस्म दे नाल लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। आप जी की सुजेस्ट करते हो पूजा किमें की जानी चाहिए? महाराज जी आखते हैं साढ़े घर दे विच नाम ही पूजा है और कोई पूजा नहीं है, नाम जपना ही पूजा है। ए बाबा जी का जो नाम दे प्रति विचार आप जी सुना रहे हैं, कहते हैं
1: पूजा कीचे नाम त्याइए,
0: नाम नु त्याउणा ही पूजा करना है, जो नाम नहीं त्याउंदा बाकी रिचुअल्स करी जाता है वो बाहर बाहर है, बाहर बाहर है, वो पूजा नहीं। पूजा उदों हुंदी है जदों किसी का नाम दिल च वस जाए, वो पूजा हुंदी है। कहते हैं साढ़े घर के पूजा भी नाम जपना ही है और कोई पूजा नहीं है, कितना सिंपल है।
1: पूजा की चे नाम ते आइए, बिन नावे पूज न होए,
0: नाम जपन तो बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। सो इतों अच सू समझ लेना चाहिए और समझ के अपनी डायरेक्शन भी मोड़ लेनी चाहिए है, मेरा सुनना ही नहीं चाहिए, अमल भी करना चाहिए। अगर असी नाम जप रहे हैं तो समझ लो असी पूजा कर रहे हैं, अगर असी रोजाना नाम नहीं जपते तो कोई पूजा नहीं कर रहे। बाबा जी अगले पूजा कीचे नाम ते आइए, बिन नावे पूज ना हो। महाराज जी आप जी का तीर्थां दे संबंध की ख्याल है? स्पिरिचुअल क्वेस्ट दे विच इनलाइटनमेंट अटेन करने वास्ते, दुखां दा छुटकारा पाउण दे वास्ते लोग तीर्थां ते जांदे हन, पिलग्रिमेजेस ते जांदे हन, जिन्हां नूं होली प्लेसेस आख्या जांदा है। इस देर सच है महाराज जी आखदे हन साडे वास्ते नाम जपना ही तीर्थ ते जाना है, क्योंकि जो नाम जपेगा वो खुद ही तीर्थ बन जाएगा, खुद ही तीर्थ बन जाएगा। साडे वास्ते तीर्थ ते जाना भी नाम जपना ही। कहते हैं
1: तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है,
0: तीर्थ भी नाम है।

गुरु महाराज ये दसो बहुत लोग वेद शास्त्र सिमरतियां ये लिटरेचर पढ़ते हैं क्योंकि असी भी वेद शास्त्र प्राण सिमरतियां आदि पढ़िए महाराज ये आखते नहीं साढ़े वास्ते नाम जपना ही वेद पढ़ना है नाम जपना ही साढ़े वास्ते वेद और शास्त्र है कहते हैं नाम हमारे वेद अर नाद फिर ये गारंटी करते हैं कि नाम जपन के नाल साढ़े ऐस लोक दे भी परलोक दे भी सारे कार्य पूरे हो जाते हैं।

रब की पूजा भी साडे घर दे विच नाम जपना है। अखीरली लंक्ति अखीरली जो पंक्ति है वो ते बहुत ही कमाल दी है कि गुरु महाराज जी ने ये आख्या है कि महाराज जी गुरु की सेवा किवें करिए, गुरु की सेवा किवें करिए। कहिंदे नाम जपना ही गुरु की सेवा भी है। जे तुसी नाम नहीं जपदे तो ओदा सब कुछ करदे हो, दिन रात मेहनत करदे हो। कईयां नूं हुंदा है कि सज्जन बहुत सेवा करदे हैं, पर महाराज जी पंक्ति हुण सुनो।

अपने मन वृत्तियों नूं जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी की सारी विचार नूं अपने अंदर टिका के रखो जो सुनया। इतना कुछ सुनन तो बाद नानक के कर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगां नूं खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग्स जहर हैं साड़ी जिंदगी च उन्हां दा इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु दी सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिरेकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनु प्राप्त करने की इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो, जो कि तमाम चीजों का इलाज है, एक किवें मैनू प्राप्त हो। उस दे वास्ते इंसान दे अंदर कितनी लॉन्गिंग चाहिए है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिए है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिए है। जे इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीकर हां नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनु देखो कितनी है। वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सेटल हो ही नहीं सकती, उसनु चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

जी बहुत ध्यान दे नाल दिखदे हन तो उन्हां नूं सारी पृथ्वी जल्दी नजर आती है। ये जल्दी किस दे नाल है? ये पूछिए भी अग लगी हुई है बाहर। अग का तो बड़ा अच्छा इंतजाम है, फायर ब्रिगेड न कितनी भी अग लगी हो झट उस बुझा देंगे। ये जल किस दे नाल रही है? जल रही है ल्यों ल्यों ल्यों ल्यों करक फिरे सब लोग। अंदर तृष्णा है जो रजदी नहीं है, जो पदार्थां नू वस्तुआं नू मटीरियलिस्टिक चीजां नू मटीरियल नू हड़प करी जाना चाहती है, जिस तरह अग लकड़ा नू हड़प कर जाती है। वो तृष्णा और लालच की अग जो अंदर लगी हुई है वह इसनू साड़ रही। तो कहते हैं जल जाओ जीवन नाम बिना। जिस जीवन च नाम नहीं है उत्थे ठंडक नहीं आएगी, वो तपेगा सड़ेगा जलेगा। अगली पंक्ति कहते हैं

मर ना जाही जना बिसरत राम। वो की कर दे, मर क्यों नहीं जाते? बेशक वो मर जान तो कोई फर्क नहीं पैंदा, जिन्हां नूं राम बिसरिया होया है। मर ना जाही जना बिसरत राम, वो जी के करनगे भी की, सड़नगे तपणगे जलनगे अते होर कर्म पैदा करनगे अपने आप ही। कहिंदे बेहतर है मरे ही जाण। मर ना जाही जिना बिसरत राम, जिन्हां नूं राम बिसरिया होया है। नाम बिहून जीवन कौन काम, नाम तो बिना जीवन का कोई भी परपस नहीं है, कोई कम नहीं है। नाम बिहून, नाम तो सखना जिहड़ा जीवन है। कहिंदे जीवन कौन काम, नाम बिहून जीवन कौन काम। एक पंक्ति होर सुन वाली, आप जी सुन के हैरान जरूर होवोगे। कहिंदे हन

डाइजेस्ट करनी थोड़ी जी मुश्किल है। बिन नावे सब चोर, बिन नावे की आख्या है, आप आखो बिन नावे सब चोर, तो असि सारे ही चोर हैं। बिन नावे सब चोर, यू मस्ट राइट डाउन दिस समवेयर। बिन नावे सब चोर, जो नाम नहीं जपते वो भले इंसान नहीं हैं, वो चोर हैं। कोई आखे इंसान के मैं तो कोई चोरी नहीं करता, तो मैं चोर किमें हो गया? मैं अपना काम धंधा करता हाँ, नौकरी करता हाँ, दसा नहों की किरत करता हाँ, ये मैनू चोर किस तरह कह देता है? इसका जवाब कोई मंगेगा ही ना। मैं तो चोरी कभी की नहीं, किसी का एक सेंट नहीं चुराया, तो मैं चोर किमें हो गया? महाराज जी कहते हैं बिन नावे सब चोर, बिन नावे सब चोर। हम किस तरह असी इस चीज का जवाब लभीए कि असी चोर किमें हुए? सब चोर एक अद्धा नहीं, सारी दुनिया चोर है। चोर इस तरह है, दातां किसे दियां हैं? ये बना अपनियां लें जा कि मेरियां हैं। किसे दी चीज नूं तुसी अपनी बना लो ते कहो ये मेरी है, फिर चोरी नहीं हुई तो और की होया? किसे ने कोई गहना पहने होया है, तुसी किसे ना किसे टंग दे नाल उसनूं उतार के आप पहन लो ते कहो ये मेरा है, चोरी हो गई? किसे दा घर संभाल लो ते कहो ये मेरा है, चोरी हो गई? ये जीवन ही परमात्मा दा है, असी कहने मेरा है, माई लाइफ। When we say my life, असी इसनु फैब्रिकेट किया है, मैन्युफैक्चर किया है, इसनु बनाया है, क्रिएट किया है, then how come we can say this is my life? जब असी कहने मेरी जिंदगी, किसी चीज एक किसी वस्तु किसी होर दी है, लेकिन असी लाइफ नूं भी कह दिंदे आ कि यह मेरी है, जिसका सानू पता ही कुछ नहीं कि चीज की है, उसनों असी कहने मेरी है। यह चोरी नहीं है? ए तन इंसान सोचता मेरा है, भला इंसान नूं पूछे जाए तेरा किस तरह होया, कदों तू इसनों बनाया सी? तैनूं तां पता भी नहीं जदों यह बन रहा सी, यह तो किसी ने तेनों गिफ्ट दिती है। इस दा डिजाइनर कोई होर है, इस दा क्रिएटर कोई होर है, इस दे पिछे इंटेलिजेंस किसे दी होर है, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन नूं चलाण वाली विजडम कोई होर है, तू कहना मेरा है? ये किस तरह कह दिता मेरा है? ये क्यों नहीं कहता कि ये मैनू नहीं पता किस दा है? जिस दा है वही इसका मालक है, फिर तू ज्यादा सौखा होवेगा। पर महाराज जी कहते हैं प्राणी जाने ये तन मेरा, प्राणी कहता है तन मेरा है, वस्तु किसे होर दी है, लेकिन ये कहता है मेरी है, तो ये चोरी हो ही जाना हुई, चोरी हो ही जाना हुई। महाराज जी ने आख्या जान के रुक्त बिरख तन माल, ये जितने भी जितनी भी वनस्पति है, प्लांटेशन है, जिसनों असी अपनी इंडस्ट्री दे विच लैके आने पाव रॉ मटीरियल, ये सारे का सारा रॉ मटीरियल मटीरियल असी खुद बनाया है। लोहा, सोना, कोयला, रबड़ के दरख्त, अते दरख्त जिहड़े लकड़ी पैदा करते हैं, फर्नीचर पैदा करते हैं, रॉक्स जिन्हां तों असी मार्बल लैके आने हाँ, वो असी आप पहला जाके बना के आए हैं। इंटायर वेल्थ जिहड़ी है छुपी पई, वह परमात्मा की साजी हुई है, उसनों फिर बाद च लिया के असी आखदे मेरी है। ए चोरी नहीं हुई तो फिर होर की होया? जिहड़ा संत है वह यह कहता है मेरा मुझ में कछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। हुण साडे कोलों कुछ चले जाता है तो असी रोना शुरू कर देने हैं कि चले क्यों गया। जे तुसी पहले दिन तो ही ये सोच के रख दे कि ये तुहाडा है ही नहीं, तो फिर तुहानूं तकलीफ किवें होंदी?
जिस चीज नूं अपना कहता और अपनी है नहीं, अपनी बना के बैठ गए खाम खा और फिर उसके जान उत्ते रोना शुरू कर दिया। इस तो वड्डी अज्ञानता और की हो सकती है। तो मैं आप जी के सामने पंक्ति पेश की सी, महाराज जी आखते हैं जिन कीते तिसे न जाने, जिसने ये चीजा बनाईया हन, जो इन्हों का मालक है उसनू तो यह जानते नहीं हन, ते बिन नावे सब चोर। नाम तो बिना, नाम जपन तो बिना, नाम जपन तो बिना वो अवस्था नहीं आएगी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, वो जागरूकता नहीं आएगी, तो असी चोर दे चोर बने रहांगे। वैसे भावे असी दसा नहों की किरत भी करते हुई ता भी चोर दे चोर बने रहा, क्योंकि बाबा जी की बाणी ने आख्या। मैं आप जी की सेवा च एक लफ्ज भी गुरबाणी तो बाहर नहीं आखांगा कदे। तो गुरबाणी नूं चैलेंज करन दी ना मेरे च ना होर किसे च हिम्मत। गुरु महाराज ने आख्या बिन नावे सब चोर। होर आखते हैं, कहते हैं

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी अरमता और बख्शिश सतगुरु जी दी इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लैं के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है एदे विच कला है वाजे पंज शब्द घर सवागे शब्द वाजे कला जद गिरधारिया उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया दे विद्वान और कलाकार सूझ वाले बैठे हो गुरु दी कला देखिए राग सारंग विच और आप जी चंगी तरह समझ के इस नूं सुनोगे आप जी दे तन मन विच ठंडक पैदा हो जाएगी और गुरु दी बख्शिश और समय दा इह निचोड़ होवेगा। शब्द सारे माई भाई बड़े प्यार नाल टिक के सुनांगे तां इहदा ज्यादा लाभ होगा।

चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजम्भम सुभम सर्वदा सर्व जुगते दुखा

पायो बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु चाप रखे उन कर प्रगति आख सुनाया, सतगुरु मिले ऐसा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम है विचार है जिन सच्चे सों चित लाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की किसन तो खेई जिनी सचो साहित्य आया उन्हीं मंदे पै न रखियो कर सुकुर धर्म कमाया उन्हीं दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तुम बख्शीसी अगला निदे वह चढ़े सवाया।

कौड़ा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारखु होए जहरी कहावई। कौड़ियां विचों पैसे, पैसियां विचों रुपये, फिर सोना, फिर तकड़ा व्यापारी हीरियां दा आखरी स्टेज ते पहुंच गया। भाई साहब जी कहंदे ने हौले हौले तरक्की कीती ते सब तो उच्ची मंजिल ते पहुंच गया ओ व्यापारी, पर शुरू होया कौड़ियां तो। कौड़ा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारखू हो जहरी कहावई।

लोक पर लोक बिखे ऊंच पद पावई। छाड गुरुदेव आन देव को सेवक होए, निफल जन्म कपूत होए हसावे। लोकां दी सेवा करदा, संतां दी सेवा करदा, देव देवतियां नूं मंदा होया मनुख उच्चे ते सुच्चे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणां विच पुज गया। पर की वेख्या, जेड़ा सीस गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अर्पण हो गया, कोई थोड़ी जी दुख सुख आ गया ते फिर थां थां ते भटकन लग पिया। कदी किसे संत कोल, कदी किसे कोल, कदी किसे देवी कोल, कदी किसे देवते कोल, ते फिर लोग मजाका करदे ने, आ देखो गुरु का सिख किथे किथे भटकदा फिरदा है। आ थोड़े दिन ही होए है, मैं एक प्रेमी गुरसिख नूं पुछया की हाल चाल है, कहिंदा कम तुर नहीं रहा, बड़ा परेशान हां। कहिंदा एक चिट्ठी आई है, ए भेजी है साई बाबा वालिया ने, आख्या एदा जाप करो तुहाडे मन नूं भी शांति मिलेगी, ते नौ निधियां अठारह सिद्धियां आउणगियां। ते मैं क्या भोले मनुख की करदे फिर। कहिंदा जिथो नौ निधि मिले असीं ओदा ही जाप करना है ना। एक वारी प्यार नाल बोलिए सतनाम, ते नाल लिखिया सी एदियां 500 कापियां छाप के फिर होर ना पासे वंड। नबज वेख लैंदे ने ए सुहागण किवें अपने मालिक नालों टुटे ते नूं पतित करिए। ते थां थां ते ऐसियां दुकानां हन, गुरसिख नूं बड़ा सावधान होना पैंदा है, जिवें पति विरता स्त्री सावधान हुंदी है। मैं क्या गुरमुखा, स्त्री सौरे नूं भी मत्था टेकदी है, जेठ देवर दा भी ध्यान रखदी है, ओदा भी सत्कार करदी है, किसे संत नूं दुरकारना नहीं। सत्कार अदब हर धर्म दा करना है, पर जो स्त्री अपना मन ते तन अपने मालक नूं देंदी है, ओ किसे दूजे नूं नहीं दे सकदी। इसे तरह अदब सारिआं दा कर, पर अपनी जड़ नूं ना भुल, नहीं तां मजाक दा कारण बन जाएगा। तू अज साईं बाबे नूं मनेगा, कल तेरे बच्चे थोड़ा बहुत ए भी सिक्खी तो पतित हो जाणगे ते मुनकर हो जाणगे। ना सिख ना हिंदू ना गोरे कुछ भी नहीं रहणगे, ते गुरु की साध संगत। गुरु रामदास पातशाह कहंदे ने, ए गुरु आप ही चाहे तां पल्ला पकड़ाए, नहीं तां असी सिख तां छड़ जांदे आं गुरु। बाबा फरीद जी भी कहंदे, फरीदा ढूंढे दिए सुहाग को,